जब खुदा किसी को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया इसीलिए वो खास बात खुदा में।

पे, या लिखूं उस चांदनी के मरने पे, या लिखूं तेरी नजरों के जादू पे, या लिखूं उनके शर्मा के झुकने पे, या लिखूं उन पहाड़ों के बारे अब जिनके किनारे हम सड़कें बनाकर तो कहने को घर जा रहे हैं।

0: दोहा को सारे गीतों का जा सारो वाद आनंद
1: नो
0: प्रॉमिस
1: प्रॉमिस
2: एमी हूँ था अबदो एकु गवो मा बाउ दो वे

0: 네.
1: 거 봐. 뭐 와구토 와구토 와구토.
2: 고미.
1: 얘는 걔네 나가라.
2: 고미 미에 쿠에리 컴마티 티베겐 쿠리 메살랑.
1: 오케이 아쉽다.
2: 샤히둥게 지쿠라게 마키
1: 야도다.
3: 야 얘들아 아메이. 기하 데라카. 샤히둥게 지쿠라. 에톤코라 메리게 메키.
1: 에오코바바구토바구토바구토. 바구토 아마베.
3: 에티스키다.
1: ओके ओके थैंक यू यस वगुतो अमावे जशवा निकोलो नव किया पिया का मुली बेनी वी पॉइंट
2: जोशे गणा मी दो गाउ मी उ
3: तो से नते के दिंगुरी ओके पूरा वाला कंदे लवे
1: ओके एम मी मा वरा रंगल बराबर उनी बेने मुंगरा राया सुमकु गरे फिराया अमी लेंगे जाला सुमे दिए एम मी ಮಿಫಾರ್ ಕೊಲ್ಲವೇ ಜಹಾಲಾಣಿ ಹಾಲ್ಮೆ ದೆಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾವ್ರು ಲವತ್ತಂಗ ಆಯ್ತಾ
3: ಗೌಮಮ್ಮಿಯ ದಾದಿ ಕೊಲ್ಲ.

बस अडवाह एग तेरेंग एम्मे रंगलो थके चत्तबावा मीहुन्ने एवरेन्नं अल्लाह तेदमगु देखेवी मीहुन्नी एई ए आदि बुद्धि एग अहुलवरी नीवेस हम एवरेन्ने।

0: Game on!
1: अमन कुरिया मिगेंदा गेम ऑन गेम मी हफ्ता गे शो गामन वरा इंटेंस राउंड दे में दिए तो मी अज्जा गे वरा नेगे मालूमात तंगे बहुरी कंग अमिल लेविस इहुसास कुरे विच तो मैं और बादन जेनी देंगे अवॉर्ड तब तो मी के फोन देंगे ना गेम शो का तैयार हुआ मैं
2: अवॉर्ड तब बाला मैं एक अम्मी बने कितावन अवॉर्ड कंग एको तंग हजार नॉर्ड मैंने
1: ओके देम में तेरे के स्वरंग हास बे अमन देम वरा कुरा हितुं कुरा कम एक कम हमेशा हुआ फाहा का कुरे वे
3: लावे किया लमा लावे किया लमा
1: लावे किया दमी चहेरी
2: लावे
1: खारो के जस्से में नुआर हैं मैं मतलब वरफ़ फ़ासे हो आने में कंगा मर्ड उन दो गोले नुआर
2: ओके
1: ऐ मैं मिहारो मी का शाहू देना वरफ़ फ़ासे को दे में ओले बहेद देने ये बस ही मैंने गोता फ़ासे कौन तो उम्मीद करें लावे किया जहें ओके वारा कॉन्फिडेंट इंगे गैम वेस वाह कदी इदी बुनेला गोतुन शो होंगे कॉन्फिडेंट कहें भी मत आई यार वेजे या फुरी तो मैं बाहर की का कुरिया दान तैयार वारा फंसे को लाना लोबी
2: लोबिंग यारो का विमा दो दिन हम दो वर अली कॉफी
1: वारा रंगलो जवाब रंगलो इंगे
2: लिरिक्स नो बाकर नहीं
1: ए मसले नो मैं हर शाओ लव इंगे वर को देने को ओके वान असरो
2: असरगा मगे ही पुरे कंग तिलो बिंग गिया मत गिया
1: डेंगू निकल लावे कंगाती
2: डेंगे पेशे बाढ़ लेकर
1: आह ओके अरे रंगड़ ओके डेंगी सु डेंगी आ बस लो
2: लो तोड़े मगे लो तोड़े फिनवाती मिहारु मिदे फैवले
1: आह ओके डेंगी डेंगी बस इंगे नेवा
2: नेवाला हिंदो यारा वे अब तुम आगे में गे तेरे का
1: आ जवाब रंगल फर्स्ट वन बस नफ्सो
2: मदा है करने के
1: मदा है करने ना
2: नफ्सो है वाला देश नडी रामालोन करी
1: ओके गोईये
2: गोईये गोईये महीनो रफ्फद गोईये
1: गोईये
2: गोईये कुछ तक पाका दानंग है गोईये कुमाले दानंग है गोईये
1: रागड़ रागड़ ओके देंगे सवाल बिपड़ी देंगे बस
2: ओके
1: करुणा
2: करुणा वी बे वफा
1: रंगलो रंगलो वाला बारा बोलेंगे कोम्बे पाक में से बाद है लावे आदि एविस लावे नूकी है नूदे ओके देंगे बस
2: हिनितुं वेला शेकला
1: मिसाल का हिनितुं एहम भाई एहन लावे क्या बोले बड़े मैं हर मैं सीजन का मूलिंग एक कों हमा हिनितुं वेला शेकला आने हिनितुं वो
2: हिनितुं वे बाला लातो एहनी कला हितकी कला विंदकी वेस हमा कला
1: ओके बीबी हाँ बीबी
2: मीलाल बीबी रसरण का मन ना
1: आप लग जाए ना मेरे बात दोनों में तो ऐसे में ए वाला लव किया ओलं तो
2: या कर रखे का देख आड़ रीति नून उसकी धान तो
1: आ देंग कीनेंगे ये ना मामा इनके आड़ रीति वाकी तो मी हूँ मुले ना मामा मैं कैसे तो क्या रिकॉल लेंगे मैं आम को तो मैं बोर्डा फिल्मी दायरे का मासिक के तो वहाँ का दाखले सामान फाहा कोरी कैमरा का फुरा का हुन्ने मासिक के कोलम बेनु मणि मैं आरु अमन ना मिसाद का मिले बोनी मैं लावे किया दम फुर्सत राज्य के कोम फंडना ने काय की गामन लावे किया दम बेनु मणि
2: अश्फा
1: अश्फा याय की गा अश्वा ते एम्मे कमुदानी मैं आरु इंका बरें को कोलमा एम्मे कमुदा फा संघिम फंडना नो लाव क्यों तेरे
2: अश्फा देन मिहर राया लव किया राया देन राफियत मीरा
1: ලම් ඕකේ එහෙමම මීන් කොම්මේ ෆන්නානේ කේසම වරක් කමුදා ෆන්න එම්මේ කමුදනි අෂ්ෆාගේ අෂ්ෆාගේ කොන් ලවෙන් මන්නන් එම්මේ කමුදනි
2: හුරි හලසෙ නෑංගම ෆේවරිට් ලවක හුන්නන වකි මෙම් ප්ලේලිස්ට් හදාපු අෂ්ෆාගේ ලව එදෙන් මකිතම් එක්කල නිදා ගඩේ ගෑන හැම වර ෆෝර් එකද කොල්ලා ෆල ලව සඩේ මෙබනේ වදාන නෝනේ කිතම් මජාව ෆින්න ගඩේ එක ජහන් එක්කල කම්බුලෝගේ ලවෙන් එක හලගත කවස්
1: හැම මම ප්ලේ ලිස්ට් එකේ ඉඳලා මාෂ්වායිකේ වර පහ කොල්ලේ
2: ෆා දරවියස් උපාවියස් දශපග කොම ලවස් ඕක
1: හැම මාෂ්වායිකේ අමන්න වර කමුදා ෆන්නාන කම් මේ වේදෙන් මේ අමන්න කී ආමු ගොතේ ගමන්න කමුදනි කොංකා ලවතකෙන් අඩුවහ මඩු මෑතිර්තනුනේ ෆෝර්
2: එකද මඩු මාතිරි හැම කාර ගොලේ මම ස්පූහි වන්න ජහල ලවෙන් බෑ නිදිගෙන් මන තමන එක සාකල මතිකස් මෙහන් ජහකල් ලව හේති ඒකත් අන්නන
1: ඒ බොඩක් ඒ කිවස් බොඩක් කල් ලවත කමුදානි මනි හිංහ මජේනි තඩුව
2: හිංහ මජේනි
1: උස උෆා වා ගඩේ ගමති
2: බොනිත උෆා වා ගඩේ ගසම වරස් ලෝ ලව එක මෙමි කම්බුල ගස් මෙහන් නනන හම එම් සෑඩ් ලව ද එක තම මජා වියස් ලව ජහග මුල තන මිසල් ක සාෆ් කොරියස් නෝනි කේයස් හම අෂ්පාගේ කල්කම් ස්ලව
1: දෙන් ලව අඩෝ හා ගඩික මිසාලක හම ඒක තිරේ වදේ වේක ඉමෝෂනල් වේ තෙව සර කාමන්
2: නිදා ගඩික දෙන් හැම කොටක එනකති හඳාම් වාර දබ මත ඒ කාල ගොතක ගොස් දාන්න ද එනක හමන එන්නන මේ නියුමා ෆිල්ම් ග මෝආ නියුමා බීච් එක ගොල ලව නම් හඳන්න නැති කම් මේ ඔල්ලනේ එලව වේ සමවර ජහන්
1: එම එකහල රීති රොමෑන්ටික් මඩු මෑතිරි ලවතක කමුදනි ද ඕකේ එහෙම මෙහිnga දෙම්මෙ තිකි ෆන්නානෙගේ වාහක වර ගදේ දක්කෑ ෆින් තාෂ්වා අනික සෂ්වාගේ රීති ලවේ එහුන් තෙරිනහ මමන්ගේ ෆරාතුන් එවල්දි ෆෂහුම බද්දෝ කොල්ලානේ

0: मान लो अगर कभी किसी दिन तुम्हें अचानक सुधा मिल गई तो
1: कभी कभी सबसे बड़ा सफर वो होता है जहां हम किसी नई जगह नहीं बल्कि उस मोहब्बत के पास जाते हैं जिसे हम खो चुके हैं।